0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: खबर को द लोबुद मैदान भी या द पार्लियमान, मसला को इलाकाई भी या कामी, खबर को स्तासु भी या स्तासु द चापेरियाल, रसूबा स्तासु वक द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोल शे तासु मौजूआती इल्मी और सेंसी मालूमात پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف اور صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔

0: त्रय माजे में जी दर्द हो गया ये जो पदशा पर सीधे तशा हो कस्ती थी
1: जनाती से तारखना पशा पर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो कस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मराय में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जो दस रंगे सरा प्रोब रही
1: बिल्कुल तारखना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी उस्टूल कुर वाला नकवाशूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब दर्द इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासूसियात दागा दी जी कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर्द हुई दवा मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून लाकी गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।

द हर झळ आवाज रेडियामान आवाज रेडियामान 88.4 नेटवर्क मुंगरळू स्तासलपारा दगशान मनमती परभ्रमण चितस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंग स्तास सरयो रेडियामान 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज युवान रंग अमन अमन

खामोश रहते हैं, हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

हमारे शराबे हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

नदीम तन्हा मेसेज राली गेले शागेना ओई छे इकराम भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह डेरिशमा प्रोडक्ट हरसी की अवैदा से चल बहु कुछ जुबेर मामा रहा शिजबम दर्शम तो बलाड से कोर तो जब जुबेर मामा से रश पाओ का जुबेर मामा तो डांस के हा आस्ता डांस ने कतले सही डांस दा यो गुता इस्तान दा कतले सबागुल दबन नमाया दई वही जी सिंह है शुक्र दे खैमा सबागुल ते सिंह है मोहम्मद दीन जमा खो गुरोर दे इश्मा स्टार दे आओ गजनी खेल मार्केट के करीम खान मार्केट के नास्ते इश्मा तमाम प्रोडक्ट और सर मिलावी की शकील द बरकम बर खेल होना बरकम बर खेल मदरसा बाजार हाजी जमील मार्केट अफरीदी चप्पल स्टोर पर नेम माने द इस्माइल दुकान दे और माशाल्लाह जमा द इश्मा तमाम प्रोडक्ट और सर मिलावी अदन मैसूद जमा डेर खोगे खोर दा वही ची इट्स मी अदन मैसूद फ्रॉम अ टांक अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई वेलकम भाई वाया के नाम संग चल दे तो वेदा सीमा सरदा पखवा के नास्ता दा ची भाई वाया के तो पटान के उसे पेखावर के सदर तो हुए मां और वही सिंग हाल दे ताजो पेखावर के भाई वही उसमें इश्मा हर्बल आयल और इश्मा हर्बल टूथ पाउडर यूज कर डेरा मजे ओकड़ा खिस्ता रिजल्ट दी जमा टोल खल को ददा मशवरा था पैगाम इश्मा प्रोडक्ट इस्तेमाल की सिकंदर बोरको वाला हमारे सब के दिलों का सिकंदर सलाम अलैकुम इकराम भाई सिंह तबियत दिखा दे बराबर है इंशाल्लाह मुंगा बदरजू पिशावर था हाँ इंशाल्लाह मा तो हुआ ही सही था चिजा दरना पट शाम आज हुआ और सबाहत दा मैसेज रा ले गले दे सलाम अलैकुम इकराम भाई सिंह खाई ठीक ठाक है बराबर है जमा अम्मी तासो ता स्पेशल सलाम कही और तासो अम्मी ते जमा स्पेशल सलामुना जुबेदा नूर मैसेज रा ले गले दे अवे भाई जमा दर तो व्हाट्सएप मैसेज करे दे जरूरी उगोरा यार बस जमा खोर जी सिंह पदे पदे इनबॉक्स के द मैसेज नो यो बारा नहीं करा प्रोग्राम तक टूल मैसेजेस डिलीट कम बया माशाला नूर दुमरा ढेर राशि राशि व्हाट्सएप के ढेर ज्यादा मैसेजेस भी इनशाला उबे गोरु हा स्टॉप मैसेज बांधे बा अमल दरामद साइदो शादो रेगा दो हिनासना हुमा दे चार सदीना वाई छे नब्बे शारिया चार दबंग रेडियो नब्बे शारी सिफर जलमी रेडियो उम्मीद रेडियो चार सदा माशाला पटोलो दे आवाज सफा दे मौलाना अब्दुल खालिक से मंगल मेला खैबर प्लाजा जमा द इश्मा तमाम प्रोडक्ट सर मिला नादरा गुल वही वेलकम सीईओ से वेलकम नादरा गुल सिंह खाई ठीक ठाक बराबर जाफर शाह मामा जान सातर तनूर ना सही।

साठ पचहत्तर सिफर तीन सौ सत्रह सिफर नब्बे साठ पचहत्तर जीरो थ्री वन सेवन जीरो नाइन जीरो सिक्स जीरो सेवन फाइव यू वे आओ जीरो थ्री वन सेवन जीरो नाइन जीरो सिक्स जीरो सेवन फाइव जर जर मैसेजेस ओके खो मां प्रोग्राम की क्वेश्चन रोड़ दे मंगल टोल पुख्ता नहीं हूँ और बे बिलखसूस बिलखसूस जमंग नेशनलिटी जमंग खावरा जमंग वतन दा पाकिस्तान दीजी शहीद हो सन बेल मकाम दे या शहीद हो सन बेल जहां।

यस यस बिल्कुल सही दी हाँ मनम जी बिल मैसेज रागा दे दी हाय हाय टू अस्सलाम वालेकुम जी कालर दरा सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब जमावास दर्जी जी 0317-09-6075 मेहरबानी बड़ी सर खपल रेडियो सेट लेकर पकड़ करे चिस्ता सो आवाज सो खबर माता सफार और रसी खैर दी तसो रेडियो रुस्त टीम के मतलब चिकल अकाल रफशी बिया रेडियो तेज के जमीन दो आवाज की 30 सेकंड डिले था नो कोशिश करे छे तो एतक ख्याल सा देखा वो चिनिन पतलो की द्वा दरेज रास्ते निशो हाँ निन पतलो तलो की द्वा दरेज रास्ते निशम दमुरजान दमख आवाज में खदमुरजान दमख खे आवाज में नो ऐदा से शर्म नो खा बड़े खलक खफशी बहुत बड़े खलक मियां दे पसी खफशी नो

0: अच्छा
1: सही दा
0: दागा नंबर बंदे
1: आओ बिल्कुल पदागा नंबर बांधे
0: ओके
1: दा जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच यू जहान मनना

0: आपको बाखबर, हर खबर से खबर वो जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अम।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 85-83 यानी 8583 पर भेजें।

0: अॼुकल्ह के पास आसानी सरा मिला वेगी और द दिन अलावा मुदसर शॉपिंग सेंटर के हर किस्म कॉस्मेटिक्स सामान गारमेंट्स हर किस्म बुरके शादी ब्याह सामान द हर किस्म पीतो लेस और पीतो सरा सरा नरिनाओ जननाओ पेजार मुदसर शॉपिंग सेंटर दुकान पते दरसरा नोट कई डॉक्टर हबीबुल्ला मार्केट ताजी कला अड्डा बनो।
1: Ladies and gentlemen,

0: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: द करक पर तारीख की और मयारी इलाज लपारा दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक की डॉक्टर मुस्तफा कमाल सेब नास्तवी। डॉक्टर मुस्तफा कमाल सेब होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के देश काला पूरे तजर्बा लरी और तीसरा करक के हम देश पक कालाना कारकवी। द डॉक्टर मुस्तफा कमाल सेब पनिग्रने की द मुख्तलिफो बीमारियानो इलाज की गई लका असाबी कमजोरी असाबी दर्दुना मुख्तलिफ किस्म एलर्जी द बदन पारसोब द सरमनी बीमारियाने बेवख्ता विश्तान स्पेनेदल विश्तान गुर्जीदल द नरीना और जनाना द बेउलादे बीमारियाने और द जनाना रसूले द ट्यूबुनो बांदेश द मशुमानो जहनी कमजोरी द जिगर द हराबेदो पवजा द बरातल बदहजम द कुलमो स्वजेदल द कुलमो टीबी खूनी औबादी बवासीर पेचस प्रास्टेट द त्रिखी कानी द त्रिखी सोजश द त्रिखी परसोब द गुर्दो कानी द गुर्दो सोजश द गुर्दो खराबेदल द खपो तले स्वजेदल द खपो परसोब औ द खपो दर्दुना खलो उचेदल द मैदे स्वजेदल द मैदे गैस औ वरसरा वरसरा यूरिक एसिड औ द बदन द दर्दुनो सरासरा द जुड़ुनो द दर्दुनो इलाज की। द मशरानो और बेवसा खलको द पारा खसूसी रोयत हम डॉक्टर सेब वर्कवी। दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक पताई तबलीगी मरकज करक नजदी खुशाल खान हटेक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर तमहामख रबते नंबर ये दे 0301212343 यानी 0331 1212413।

0: Τώρα μαζί με ζει, τάρτο ούγε γέζει από τα σαπάρσι, δε τάσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτα, ρε έχω στηρί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτα, μάρα με ζει, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτα, βαρύβι. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γυλε βε χάρβα τε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτα, ρε βοράλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλ δι.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या के पेशमा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दा पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुद की ओ दिनोर सरफे पर निस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर दा कपड़े सा पई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाम इस जी के दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दा पने গলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তামিলাবিজি।

जी बिल्कुल तो सुबह दो से हर बुध पौरसवी दिस पे 10 से 12 बजे पर छठ प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम की भी तो से मेजबान सुबह सुबह तारिक और दिन लवा दे मंगल पौरस भी हो बिल्कुल परिन चिकी मा शुद्ध करना बिल्कुल मिस्र भी दो मदा से कल कल वी करना मसरूफियात चिकुम दे करना मसरूफियात पहुंच बन रहा सरसी

हाँ जी प्रोग्राम के बिल्कुल खबर तरी की जी दिन लम्बा तुस हर तलाशे प्रोग्राम की शिरकत कवले शी शिरकत बिल्कुल सरंगी कवे मैसेज कवले शी कॉल कवले शी कॉल कॉल दोबारा डायल कवले शी पीटीसीएल नंबर आओ पीटीसीएल नंबर शिकम दे रेडी दे आओ बिल्कुल पीटीसीएल नंबर दे 09272912922 यानी पीटीसीएल नंबर 09272921292 आओ दिन लो मैसेज तरीका हां देते रहा सुना मैसेज हां कवर छे पर मोबाइल के लोड छे राइट या ग्रेट ऑप्शन था चर तक मैसेज लिखे अगे जई तो बोलोड छे लिखे बोली के गड़ खरोब छे आर ए के जगह हम बोली के या मोबाइल के स्पेस फेस बाद पल्लो मखपले इलाके नो या एसएन के पर 8583 बने यानी 8583 बांधे कला तुस मैसेज रुशी प्रोग्राम से मैसेज रुशी मिली जी बिल्कुल हफ्ते के दगा युवा चुकम द चिट चैट प्रोग्राम ही दस पे बाकी खुदा मंगल पर रसवी रास के सरा फोगवशी चुकम दगा युवा शुवी हर बुध पर दस पे 10-12 बजे परे तो सब बिल्कुल बिशकीगी रेडियो अमन स्टूडियो ना बिल्कुल बरा है रास हो सब बिल्कुल गोशे शिकेम देखना नहीं है ठीक शुआ

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: जी सही। अच्छा सही बिल्कुल दस के बीच कॉल से मेरा भी भागे नमक के दिन से चा मैसेज इस घड़ी दा भी बिल्कुल शामिल के बैगे ना बाद कॉल तरफ दर सी के ना
1: जी बिल्कुल।
0: शाह सही। अच्छा जी बिल्कुल चा देखिए हम देना मैसेज इस घड़ी दिखा दा हो बिल्कुल शुकी जी ना कल कल सी के ना मैसेज पता ना लगी जी।